का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना, हाँ जिंदगी ये कहे।

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज़ ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ जिंदगी ये कहेगा तू गाना, हंसते गाते दिन बिताना। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ जिंदगी

0: तेरी करम नवाजी दा मैं किवें करा शुकराना। दिल दियां तो तारा जोड़न वाला साडा पारज बाई ए खास बहाना।
1: क्या बात,
0: तेरे वर्गे खैर।

जावे ले जा सुख सुने हा मेरे सोने यारां दा उस दे सिर तों सजदा वारी मेरे गूढ़े प्यारां दा।

का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना, हाँ जिंदगी ये कहे।

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये

एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये

0: नॉर्मली जरा ओवरऑल एक चलो बैलेंस्ड लोग बनाने कामयाब हो जाते हैं। एक बायस जेंडर बायस जोड़ा है वो आप जी गल करिए आप उन्होंने पहले ही कहता जाता है कि हाँ यू आर गर्ल तुम सिर्फ आज वास्ते है स्पैसीफिक तुम इस बुलावा नहीं सोचना। एक रुझान जोड़ा ये तुम्हें कदम लगे कि किस किस तरह का रुझान है।
1: शमी जी, आपां ना हुण पुरानी गल्लां कर रहे हैं
0: जी जी
1: अजकल दा, क्योंकि वही पुरानी गल्लां अपने ना माइंड च हजे भी इनहेरिट हैगियां
0: है कि
1: कि गर्ल्स नूं मौका नहीं मिलदा या गर्ल्स अग्गे नहीं आंदियां। मैं पहला भी कहा सी तुहानूं, ओलंपिक्स की आपां गल
0: हाँ जी हाँ
1: करिए,
0: जी
1: इस बारी
0: बिल्कुल
1: ओलंपिक्स दे विच पीवी सिंधु, साक्षी
0: हाँ
1: मलिक, दीपा
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कर्माकर, मैं तुहानूं एक गल दसदा, शायद इन्नी प्रेज इन्नी रिकॉग्निशन किसी मेल एथलीट नूं ना मिलदी जिन्नी प्रेज जिन्नी
0: उन्होंने
1: रिकॉग्निशन
0: मिली।
1: इन्ना फीमेल एथलीट्स नूं मिलिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: लोकी बोलदे बहुत कुछ होणगे, बहुत कोई पुरानी मेंटेलिटी दे कुछ बयान आते होणगे, बट मैनूं ऐ लग रहा है कि अपना देश जिहड़ा बदल रहा है हुण,
0: चेंजेस आ रहे हैं
1: चेंजेस
0: कि
1: बिल्कुल पॉजिटिव चेंजेस आ रहियां ने।
0: बिल्कुल
1: हुण कोई सक्सेस जे किसी कुड़ी नूं मिलदा हैगा, आई गैस सारे ही लोकां नूं उन्नी ही खुशी हुंदी है जिवें
0: वेलकम
1: उहनां दी
0: करते
1: कोई,
0: हैं।
1: उहनां
0: बिल्कुल
1: दी भैण, उहनां दी कोई घर दी परिवार दी मैंबर ने कि जिवें ओह खुश हुई। मैं आप मैच वेख्या सी पीवी सिंधु वाला,
0: हाँ जी हाँ जी
1: तुसीं
0: बिल्कुल
1: तुसीं
0: जी
1: साडे घर 'च कोई बैडमिंटन नहीं वेखदा, कोई खेडता नहीं हैगा,
0: ठीक है जी
1: सारे परिवार ने उत्थे घट्टो घट 20-25 जणां ने टीवी दे अग्गे रह के मैच वेख्या, ते जदों उहने सेमीफाइनल जित्तिया, तुसीं यकीन नहीं मानोगे इन्ना असीं नच्चे। मेरी
0: सही है सही गल
1: आईएससी
0: है।
1: सिलेक्शन होण दे इन्ना नहीं लोकी नच्चे होणगे जिन्ना उत्थे नच्चे
0: क्या
1: सी,
0: पता
1: पूरे
0: वाकई
1: पूरे
0: वो
1: बाजार दे
0: बिल्कुल
1: विच इस तरह
0: मुनीश
1: दा
0: है
1: माहौल
0: ना
1: सीगा।
0: सही गल है ना।
1: ते कहण दा भाव इही है कि अजकल दा जिहड़ा साडा सोसाइटी है उह बदल रही है, होपफुली अग्गे होर पॉजिटिव चेंजेस आणगियां,
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं
1: बट जे किसी कुड़ी नूं रिकॉग्निशन मिलदी है अपनी मेहनत नाल, उन्हें रिकॉग्निशन हासिल कीती है। साक्षी मलिक हरियाणा तो
0: हाँ
1: आपां
0: जी
1: कहिंदे
0: हाँ बिल्कुल
1: लोएस्ट लोएस्ट
0: बिल्कुल
1: एक्सरे शो हैगी हरियाणा
0: हाँ
1: दे
0: जी हाँ
1: विच,
0: जी
1: हरियाणा इन नॉर्दर्न इंडिया दे विच, बट स्टिल देखो किन्नी उन्हां नूं रिकॉग्निशन
0: यानी
1: मिली।
0: एवरी क्लाउड है जो सिल्वर लाइनिंग आप कही
1: एब्सोल्युटली
0: ये सिल्वर लाइनिंग भी हूँ जी धुप च तब्दील होती जा रही है तो क्लाउड जोड़े है उन्होंने लगभग बस्ट कर ही लिया आप क्लाउड बस्टर हो चुके हैं
1: इन्हें अब तुसी
0: उजाला आ रहा है।
1: सिविल सर्विसेज वेख लो, कोई तुसी मेडिकल दे कोई एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आंदा, सब च कुड़ियां अगे आ रहियां ने। अब हुणे
0: जी
1: बोर्ड दे रिजल्ट्स आए उदों कुड़ियां सब तों अगे सीगियां,
0: जी जी जी
1: कुड़ियां रिकॉग्निशन हासिल कर रहियां ने, मेहनत कर रहियां ने। असीं जस्ट जिवें अपने बच्चिआं वांग, आपां कुड़ी मुंडे लईए ना, आपां बच्चे ना ना
0: हाँ जी हाँ
1: लईए,
0: जी
1: जिवें
0: बिल्कुल
1: बच्चिआं नूं इक्को इक्को वर्गा आपां सपोर्ट देना, इक्को वर्गी
0: हाँ
1: ग्रूमिंग देनी है।
0: फिर गल ही खत्म हो जाती है
1: सारी मैं कह रहा सारी गल्लां दा अपना सार ही यही है
0: यही है
1: कि जदों
0: बिल्कुल
1: बच्चा वध रहा, उग रहे हैं, पौधा उगता होंगे है, बच्चा
0: बिल्कुल
1: उग रहा हैगा
0: हाँ जी हाँ
1: उदों
0: जी
1: आप उन्होंने प्रॉपर खाद देती, पानी लाता,
0: बिल्कुल
1: उदा
0: बिल्कुल
1: ध्यान
0: जी
1: लाता, ट्री गार्ड लाता,
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: बच्चे ने अपने आप ही एक वधिया जड़ा बूटा है वो बन जाना हैगा, उस तो
0: अगे
1: बाद उन्हें आप ही अपनी केयर कर लेनी।
0: बिल्कुल सही जी बहुत वधिया सर। आखिर विच जाते जाते तुसी कोई पेरेंट्स नू बच्चों नू साडे सुनने वाले दोस्त जिहड़े ने उन्हां नू कोई मैसेज देना चाहो।
1: मेरा मैसेज बस यही है कि पेरेंट्स जिहड़े साडा टाइम ही, मैं इस तरह ज़्यादा उम्र नहीं हैगी मेरी, बट
0: जी
1: 15-20 साल पहला जिहड़ा सिस्टम सीगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच हुंदे सीगे पेरेंट्स नाल, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, ये सब चीज़ां नहीं हुंदियां सीगियां,
0: जी
1: असीं आ के स्कूल तो बाद पेरेंट्स नाल गल्लां करदे सीगे, उहनां नूं दसदे हुंदे सी कि मम्मी अज साडे नाल स्कूल दे विच ये होया, साडे
0: जी
1: फ्रेंड्स
0: जी
1: ने
0: जी
1: ये
0: जी
1: कीता, साडे टीचर्स ने ये कीता। वो जिहड़ी एक प्रथा हैगी साडे देश की, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। हुण बच्चे
0: बिल्कुल
1: अजकल आंदे ने या तो वीडियो गेम तो लग जाएंगे, फेसबुक सारे दे फेसबुक दे विच अकाउंट हैगे, मोबाइल दे गेम्स
0: वो एक
1: मोबाइल्स
0: हाँ बिल्कुल जी
1: तो लग जाएंगे। पेरेंट्स नूं चाहिदा है कि अपने बच्चों नूं घट्टो घट 1 या 1.5 घंटा रोज़ देन, उन्हां नूं पुछन कि तेरा दिन अज किवें लंघिया, कि
0: जी
1: स्कूल दे
0: जी
1: विच
0: जी
1: की होया, भावें
0: बिल्कुल
1: तुहानूं नॉलेज है या नहीं है। मैं मेडिकल च सी,
0: हाँ
1: मेरी
0: जी
1: मम्मी मैनूं पुछदे हुंदे सीगे कि अज तेरा मेडिकल कॉलेज च की गया, की कीता, की चीरा
0: ठीक
1: फाड़ी कीती,
0: हाँ जी हाँ जी
1: ये भी
0: ठीक
1: मैं
0: है
1: उन्हां नूं दसदा हुंदा सीगा।
0: क्या
1: ते इस
0: पता
1: तर्हां दा जदों तुहाडा कनेक्ट एस्टैब्लिश होया ना, टेक माई वर्ड, तुहानूं पूरी लाइफ पूरे करियर अपने बच्चे की चिंता करन की लोड़ नहीं है। और
0: जी
1: जदों
0: जी
1: वड्डा भी हो जाऊगा तुहानूं दसूगा कि मम्मी मैं अज ये कीता, दसो तुहाडा क्या, तुहाडा कनेक्ट भी बना रहूगा, तुहाडा प्यार भी बना रहूगा, ते बच्चा भी तुहाडा जिहड़ा है वो बहुत अगे उहदा करियर शेप होगा।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत मजा आया आज सारिया गल्लां करके बहुत ही वधिया जिहड़े विचार ने दोस्तां नाल सांझे कीते बहुत खुशी हुई।
1: थैंक यू शमी
0: तो
1: जी, थैंक यू।
0: ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, IAS SDM।

मैनू जानी ना तिला भोकर बन के हूं जदूं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं मैं पक्षियां दी झल नहीं।

तेरा हुण तख्त हिला देना जेने तू तख्त ते चढ़ बैठे ओ कुरना भी लबांगे जिस दे

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात

मारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले। तारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले।